0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अनुष्ठान निवेदन करलो भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: आपने पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक क्या उसका सीक्वल है कि ये एक अलग ही पुस्तक है जिसका?
1: ये सीक्वल इसलिए है कि उस समय 2007 में पहली सैफरन सर्च लिखी थी, उस समय लोग सोचते थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, धारा 370 समाप्त होगी, असंभव है, खून की नदियां बह जाएंगी, क्या जम्मू कश्मीर से लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनेगा, असंभव है, तीन तलाक को समाप्त करने की बात तो सपने में भी लोग नहीं सोचते थे, और 35 से समाप्त होगा ये भी सपने में नहीं सोचते थे। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इतने एयरपोर्ट बने, हवाई अड्डे बने, हाईवेज बने हैं, और जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, तो लोग कहते थे ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज लाल चौक पे हर दिन उत्सव है, हर दिन तिरंगे का उत्सव है, हर दिन भारत का उत्सव है, हर दिन वहाँ पे सनातन धर्म जन्माष्टमी है, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी हो रही है, ये सब असंभव को संभव करके दिखाया है। यह जो हिंदुत्व की एक पराकाष्ठा जीत हुई है और मोदी शाह के नेतृत्व में जो एक भारत में नवीन परिवर्तन हुआ है, तो अनस्टॉपेबल मार्च ऑफ द इंडिया ऑफ भारत, भारत का अगर कोई है तो विवेकानंद है, भारत का कोई है तो खुदीराम बोस है, भारत का कोई है तो प्रीतिलता होद्देदार है, भारत का कोई है तो चैतन्य महाप्रभु है, भारत का कोई है तो रामकृष्ण परमहंस है, भारत का कोई है तो जगदीश चंद्र बसु और सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है।
0: बिल्कुल,
1: 52 वर्ष की आयु में तो उनका बलिदान हो गया भारत की एकता के लिए, ये भारत के युवा का संदेश है। तो अब मैंने लिखा है मेकिंग ऑफ ए ब्रेव न्यू भारत, एक नूतन और वीर भारत का ये निर्माण है, ये वीर है, डरता नहीं है, साहसी है, हिम्मत वाला है और पराक्रमी है, शत्रु का नाश करता है, क्योंकि हम उस महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के उपासक हैं जिसने महिषासुर जैसे राक्षस का जो गलत काम करता था, मर्यादा को भंग करता था, उसका वध किया था माँ दुर्गा ने। यह स्त्री शक्ति का प्रतीक है, बंग प्रदेश भारत की स्त्री शक्ति का केंद्र है, मातृ शक्ति का केंद्र है, युवा नारियों का केंद्र है, यहां से जो नारी शक्ति है वह पूरे भारत को प्राण देती है।
0: 18 साल पहले जब आपने वो पहले किताब लिखा था, उसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवाद का कितना विकास हुआ है?
1: बहुत विकास हो गया, यह विकास जो है अब पीछे नहीं जाएगा, यह विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि मुगल राज केवल मुगलों के जाने पर समाप्त नहीं हुआ, वो मानसिकता बनी रही गजनवी की, वह मानसिकता बनी रही औरंगजेब की, वह मानसिकता बनी रही जिन्ना की। वे एक समय ऐसा आया कि रेल में सुबह 6 बजे आरती होती थी तो सेकुलर तालिबानों ने आरती बंद करा दी, दूरदर्शन के उद्घोष वाक्य था सत्यम शिवम सुंदरम, उसे सत्यम शिवम सुंदरम निकाल दिया, दीप प्रज्वलन को कहा कि यह तो सांप्रदायिकता है, जो कुछ भी हिंदुस्तान का था, भारत का था, उसको समाप्त करने वाली औरंगजेबी जिंदा की मानसिकता जारी रही सेकुलर तालिबानों के राज्य में। तो एक प्रकार से ऐसा लगता था कि हम भारतवर्ष में या अरब देश में है, सरकार और रक्षकों के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, गवर्नमेंट्स के प्रति एक डिसअफेक्शन क्रिएट किया जाए ताकि लोगों में बौखलाहट आ जाए और तब अपनी सत्ता, अपना विचार, अपनी भाषा, अपने ईडियम्स लागू किए जाए। वही चीज जो है सेकुलर तालिबानों ने की, उसको परास्त किया बंगाल ने, ये बंगाल में बंगाल का उदय है। देखिए शुभेंदु दास जिस प्रकार से बंगाली भाषा को अब स्कूलों में ला रहे हैं, क्या कोई किसी को विश्वास नहीं होता कि बंगाल के स्कूलों से बंगला भाषा गायब हो गई?
0: सरकारी कामों में भी बंगाली का हाँ। ये जो है वो अभी लागू हो रहा है।
1: हाँ, तो ये भारतीयता और बंग प्रदेश की जो एक आत्मा है, वह आत्मा वापस बंगाल के घर घर में और बंगाल के शासन में आ रही है। बंगाल में एक नया सूर्योदय हो रहा है, वो यहाँ के विज्ञान, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ नए उद्योग आएंगे, यहाँ का विकास होगा, तो बंगाल फिर से उस क्षेत्र समय में जाएगा जब बंगाल संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जीडीपी वाला क्रमांक 3 का प्रदेश था और आज 24वें क्रमांक पे आ गया है। तो उस बंगाल में सोनार बांग्ला बनाना, अमार सोनार बांग्ला, अमी तुम्हारे भालोबाशी।
0: आपका ये जो किताब है इसमें बहुत सारा बंगाल ओरिएंटेड है ये किताब, इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा कि नया जो सरकार बना है बंगाल में भाजपा का, तो इसके सामने दो बड़ा चैलेंज है। एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि पहले जो गवर्नमेंट था उनका बहुत सारा जो उधार है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर है, और दूसरा है कि इनके ऊपर बहुत सारा एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा के एक दबाव है
1: कि ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसका सामना करने के लिए शुभेंदु दास ने अभी तक जो भी विचार व्यक्त किए हैं, उनके भाषण हुए हैं और उन्होंने जो कदम उठाए हैं, वे एक नवीन

0: आशा का संचार करते हैं, क्योंकि इतने वर्षों का कूड़ा करकट, भ्रष्टाचार, लिथार्जी, पैरालाइज सिस्टम, और यहाँ से तो उद्योग बाहर चले गए, यहाँ नए उद्योग आने कठिन हो गए थे। अब उनको विश्वास दिला के अमित शाह जी यहाँ पे आए, अमूल का इतना बड़ा उन्होंने फैक्ट्री खोला है, और अब विमान बनाने के हैं, शस्त्र बनाने के हैं, नवीन उद्योगों को आमंत्रित करने के हैं, शुभेंदु दाने का वन विंडो क्लियरेंस होगी। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार पे चोट,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो जिस प्रकार से कमीशन खोरी और जिस प्रकार से एक्सट्रॉशन होते थे, रंगदारी होती थी, उस पे चोट करना है, ताकि या देखिए उद्योगपति भारत में लक्ष्मीपति है, उद्योगपति भारत में वेल्थ क्रिएटर है। ये वामपंथी और सेकुलर तालिबानों ने एक प्रकार से कह दिया कि उद्योगपति तो शोषक है, चोर है, ऐसे कैसे होगा, उद्योगपति के कारण रोजगार आता है। सारी दुनिया में केवल हिंदू जाति ऐसी है जो लक्ष्मी का पूजन करती है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के बाद अर्थ आता है और अर्थ से ही संसार चलता है। ये वामपंथियों ने दीमक बन के पूरे बंगाल को खत्म कर दिया, और वही टीएमसी का रहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार रहा, तो पूरे बंगाल से उद्योग समाप्त हो गए और बंगाल 24वें क्रमांक पे गरीबी की रेखा में आ गया। उस बंगाल में सोनार बांग्ला का युग वापस लाना, इसके लिए शुभेंदु दा, नरेंद्र भाई और अमित शाह बिल्कुल कटिबद्ध है।
1: बंगाल में जो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसमें तो नई पीढ़ी का एक बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि हमारा जो वोटर्स है बंगाल में, उसमें नई पीढ़ी का एक बहुत बड़ा वोट शेयरिंग है। तो अभी नई पीढ़ी के लिए आपकी इस पुस्तक में क्या भावनाएं आप दिए हैं जो वो घर ले जा सकते हैं?
0: देखिए, नई पीढ़ी का अर्थ है कि इस बंगाल ने तो हमेशा तरुणों को भारत का नेतृत्व दिया है। यहाँ वो सन्यासी विवेकानंद जब वो जमशेदजी टाटा से टोक्यो जाते हुए जहाज में मिले, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नया आश्रम बनाने के लिए पैसा दे दो। उन्होंने जमशेदजी टाटा से कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ाने के लिए एक केंद्र खोलना चाहिए, जो इंडियन साइंस कांग्रेस का सेंटर बना है बेंगलुरु में, वो स्वामी विवेकानंद ने बनवाया, उसके लिए मैसूर के राजा ने जमीन दी। तो हम लोग तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को धर्म के साथ लेकर चलते हैं, हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान, ये रामधारी दिनकर की कविता थी। तो इसलिए यहाँ का जो युवा है, उसकी भाषा, उसके इडियम्स, उसके सपने, उसके अभिप्साय, उसके आगे बढ़ने का मार्ग, ये तय करना ही इस बंग प्रदेश का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि IIT और नए खुलेंगे, यहाँ एम्स खुलेंगे, IIMs और खुलेंगे, उनको विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल सेंटर्स यहाँ पे नए खुलेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई बाधा ना आए तथा आसानी से वे आगे बढ़ सके, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और परिवार महत्वपूर्ण है, नई पीढ़ी का अर्थ है कि आप अपने परिवार के प्रति भी सम्मान रखें, माता पिता के प्रति सम्मान रखें। तो ये बंग भूमि का कर्तव्य है और धर्म है कि नई पीढ़ी को पुनः भारत का नेतृत्व करने और भारत का नया भाग्य विधाता बनाने के लिए बंगाल का नौजवान आगे आएगा।
1: ये जो अभी हमने जैन जी का जो आंदोलन है वो देखा, एक बड़ा हिस्सा है नई पीढ़ी का जो ये पश्चिमी जो ख्यालात है इसमें ढल रहे हैं, भारत की जो बुनियादी सोच है उससे कहीं दूर चला जा रहा है, इसका क्या समाधान है आपको?
0: इसका समाधान है बंग प्रदेश में बंग भाषा, बंग संस्कृति, बंग इतिहास और अपने पूर्वजों के प्रति एक ध्यान देना। और दूसरी बात यह कि ये हमेशा ध्यान रखना कि इस 28 से 32 साल की उम्र में नौजवान जैन जी, यहाँ से नरेंद्र नाथ दत्त पश्चिम में जाके, पश्चिम को उन्होंने बंग भाषा और बंग संस्कृति में कन्वर्ट किया था, उनको जाकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संसार में सबसे पहला प्रकाश अगर किसी ने फैलाया तो भारतवर्ष ने फैलाया, हिंदू धर्म ने फैलाया। उनको जब आंखें खोली तब वे वहां की जैन जी को कन्वर्ट करके भारत लेके आए, नई मेडिकल साइंस के माध्यम से। और उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तो बंग प्रदेश का नौजवान ये जो विदेशी धन, विदेशी मन की कलुष है, उसको समाप्त करेगा, अब भारत का नेतृत्व करेगा।
1: यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ है बंगाल में, ये क्या हमारा संस्कृति में भी परिवर्तन लाएगा?
0: बंगाल का उत्कर्ष भारत के उत्कर्ष का संकेत देता है। बंगाल में जब भी परिवर्तन हुआ है उसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि का आंदोलन जैसे चला और उसका जो उत्कर्ष हुआ वो महत्वपूर्ण जितना था, वैसा ही महत्वपूर्ण बंगाल में आया राजनीतिक परिवर्तन है।